आखदे ने लोक ही काठो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा केड़ा सके रो कहानिया हड़ एकता दा बन के कटामाए असी धरती बसणाए बन के कटामाए असी धरती बसणाए धोवांगे गवार जेड़े बिच पौण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने सिर बढ़ने ने बीमी सदी दे रोण दे सिर बढ़ने ने बेलड़ा ने माणिया स्वाद है आजादियां दा बेलड़ा ने

आया अज जो वीरा समान एवें गवाई। हथ है आया अज जो वीरा समान एवें गवाई। जोरदा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष अगे वधाई। जोर दा हल्ला बोल के मित्रा संघर्ष नू अगे वधाई।

रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, रख दे ख्याल पूरा सिरी ते कमीन दा, कातों है नी

रात तक करना आंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा, अद्धी रात तक करना आंदा, सप्पां दियां सिरियां नप के सौंदा। अज हंजू केर रोवे, अज हंजू केर रोवे, अन्न दाता संसार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, तेरा मेरा करना छट दो, धर्मा पिछे लड़ना छट दो, किंज पैने फिर किते भंगड़े, किंज पैने फिर किते भंगड़े, की मतलब हो विसाखी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा, किंज रुआब हंडाउना दूजे हाथ फड़ाई लाठी दा। वास्ता पंजाबीओ, वास्ता पंजाबीओ, मां धरती दे दुलार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा, आजो पुत्तो आजो बापू तरने च वाचा मार दा। बस करो हुण होर नी सहना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, बस करो हुण होर नी सहना, भगत सिंह वर्गे बनना पैना, इनकलाब ते फिर तो लियाना पैना, इनकलाब दा पुत्तर लियाना पैना। सच कहंदे ने सियाने झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने जे झट आई उत्ते आया, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे, सच कहंदे ने सियाने भुखे रोणगे न्याणे। कुछ तू भी सोच विचार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तू भी सोच विचार ला रूबी, अकला नू हथ मार ला रूबी, तेरे केड़ा छत तो आने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने, तेरे केड़ा छत तो आने, तू भी दाने आईओ खाने। अणख आबरू खोण नी देनी, अणख आबरू खोण नी देनी, तत मोहताज किस

0: जिन कल तड़पना पड़ी जिनकी याद में,
1: वाह
0: तड़पना पड़ी जिनकी याद में।
1: जी,
0: हाँ जी,
1: थैंक
0: कल
1: यू जी।
0: तड़पना पड़े
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जिनकी याद में जिंदगी।

मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से, मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से।

0: ना,
1: वाह जी,
0: तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी, तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी।

ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

मैं सदा तेरे रादार उड़ाने हानी निकल गया रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया रादा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हनेरे नू

0: बहुत चला गया सजना, पर तेरी याद रह गई। मैं
1: वाह
0: शीशे वांगू टूट के भी, मैं शीशे वांगू

0: बस
1: आवी मुर्शद आवी मुर्शद आवी सजना दिल नू तेरे नाम दा रोग लग्या। आवी मुर्शद आवी सजना दिल नू तेरे नाम दा रोग लग्या। सांसा विच तेरा नूर जगया सजना सांसा विच तेरा नूर जगया। बुलिया दे रंग विच रंग दे बुलिया दे रंग विच रंग दे मैनू अपना बना मौला। सुबह सुबह नूर बरसा दिल ते बरकत पा मौला।
0: वाज
1: सा सा शुक्र करा मैं सा सा शुक्र करा मैं तेरा नाम जपा मैं मौला। रात दी धुंध मुक गई ए शहर दा रंग सज गया ए मौला। हर पत्ते ते हर फुल उते हर पत्ते उते हर फुल उते तेरा ही नूर वजदा ए। मन मेरा कल तक जो भटकदा सी अज तेरे दरिया बैठा ए। बुले दी गल समझ आई जद बुले दी गल समझ आई जद रब दिला विच रहंदा ए। बुले दी गल आई जद समझ विच रब दिला विच रहंदा ए।
0: वाह जी वाह जी, वाह कमाल जी, वाह कमाल
1: शुक्रिया
0: मोहम्मद जी, हर बार दी तरह बहुत बहुत शुक्रिया
1: शुक्रिया
0: कलाम दे ले
1: शुक्रिया
0: जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी।
1: शुक्रिया सर।
0: जी दोस्तों, ऐसे ही जी मोहम्मद जी ते दुबई तो नाल गलबात दे नाल नाल गलबात दे नाल कलाम भी साझा करके गए ने, ते इस तरह आखिर दे विच कुछ गल्लां बातां एक दो इंटरेस्टिंग जड़ियां जानकारियां ने उन्हां दी सांझ पा के फिर आपां अग्गे वल नूं वधदे आ, नाल तुहाडे सुनेहे सुनेहा नूं वी नाल शामिल करदे आं। जिवें कि दोस्तों

0: जी जी
1: हमने
0: जी
1: बोर्ड दे रिजल्ट्स आए उदों कुड़ियां सब तो आगे सी क्या
0: जी जी
1: कुड़ियां
0: जी
1: रिकॉग्निशन हासिल कर रही ने मेहनत कर रही ने असि जस्ट जिवें अपने बच्चों वांग आपा कुड़ी मुंडे लिए ना आपा बच्चे ना ना
0: हाँ जी
1: लिए
0: हाँ जी
1: जिवें
0: बिल्कुल।
1: बच्चों नु इको इको वर्गा आपा सपोर्ट देना इको वर्गी
0: हाँ
1: ग्रूमिंग देनी है
0: फिर गल ही खत्म हो जाती है,
1: सारी मैं कह रहा सारी गल्लां दा अपना सार ही यही है
0: यही है
1: कि जदों
0: बिल्कुल
1: बच्चा वध रहा उग रहे हैं पौधा उगता हूँ बच्चा
0: बिल्कुल।
1: उग रहा हैगा
0: हाँ जी हाँ
1: उदों
0: जी
1: आप उन्होंने प्रॉपर खाद देती पानी लाता
0: बिल्कुल
1: उदा
0: बिल्कुल
1: ध्यान
0: जी
1: लाता ट्री गार्ड लाता
0: बिल्कुल
1: वो बच्चे ने अपने आप ही एक वधिया जड़ा बूटा है वो बन जाना हैगा उस तो
0: अगे
1: बाद उन्हें आप ही अपनी केयर कर लेनी
0: बिल्कुल सही जी, बहुत वधिया सर। आखिर विच जाते जाते तुसी कोई पेरेंट्स नू बच्चों नू साडे सुनने वाले दोस्त जिहड़े ने उन्हां नू कोई मैसेज देना चाहो?
1: मेरा मैसेज बस यही है कि पेरेंट्स जिहड़े साडा टाइम ही मैं इस तरह ज़्यादा उम्र नहीं हैगी मेरी
0: जी
1: 15-20 साल पहला जिहड़ा सिस्टम सीगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होंदे सीगे पेरेंट्स नाल मोबाइल इंटरनेट फेसबुक ये सब चीज़ा नहीं होंदिया सीगिया
0: जी
1: असी आ के स्कूल तो बाद पेरेंट्स नाल गल्लां करदे सीगे उन्होंने दसदे होंदे सी कि मम्मी अज साडे नाल स्कूल दे विच ये होया साडे फ्रेंड्स ने ये
0: जी जी
1: कीता साडे टीचर्स ने ये कीता वो जी एक प्रथा हैगी साडे देश की वो खत्म नहीं होनी चाहिए हुण बच्चे
0: बिल्कुल
1: अजकल आंदे ने या तो वीडियो गेम तो लग जाएंगे फेसबुक सारे दे फेसबुक दे विच अकाउंट हैगे मोबाइल दे गेम्स
0: वो एक हाँ बिल्कुल सही
1: मोबाइल्स तो लग जाएंगे पेरेंट्स को चाहिए है कि अपने बच्चों नू घट्टो घट्ट 1 या 1.5 घंटा रोज़ देन उन्होंने पूछन कि तेरा दिन अज किवें लंघिया कि
0: जी जी
1: स्कूल
0: जी
1: दे विच
0: जी
1: की होया भावें
0: बिल्कुल
1: तुहानू नॉलेज है या नहीं है मैं मेडिकल च सी
0: हाँ
1: मेरी
0: जी
1: मम्मी
0: ठीक
1: मैनू पूछते होंदे सीगे कि अज तेरा मेडिकल कॉलेज से की गया की किता की चीरा फाड़ी
0: हाँ
1: की थी
0: जी हाँ जी
1: ये भी
0: ठीक
1: मैं
0: है,
1: उन्होंने दसदा होंदा सीगा तो
0: क्या
1: इस
0: बात है,
1: तरह का जो तुहाडा कनेक्ट एस्टैब्लिश हो जाना है टेक माई वर्ड तुहानू पूरी लाइफ पूरे करियर अपने बच्चे की चिंता करने की लोड़ नहीं है और
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: वड्डा भी हो जाऊगा तुहानू दसूगा कि मम्मी मैं अज ये किता दसो तुहाडा क्या तुहाडा कनेक्ट भी बना रहूगा तुहाडा प्यार भी बना रहूगा तो बच्चा भी तुहाडा जड़ा है और बहुत अगे उहदा करियर शेप होगा
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत मज़ा आया अज सारिया गल्लां करके, बहुत ही वधिया जिहड़े विचार ने दोस्तां नाल सांझे कीते, बहुत खुशी हुई। तो
1: थैंक यू शमी जी थैंक यू
0: दोस्तों अज आपां ने गल्लां कीतियां, तुसीं सुन रहे सी डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी IAS SDM दसूहा जी दे विचार आपां सुने अज। ते बहुत बहुत शुक्रिया सर एक बार फिर दुआबा रेडियो वालों, ते इसी तरह ही आपां दुआबा करांगे साडे दोस्त इसी तरह सुनते रहन, ते प्लीज़ शेयर इट लाइक इट, ते बहुत जल्दी आपां फिर हाजिर होवांगे एक नवे प्रोग्राम दे नाल नवी शख्सियत दे नाल। धन्यवाद बहुत बहुत, ते मुस्कुराते रहो, खुश रहो, रब रखा।